आके जिना ने सच दा तन नाम दा तन खटिया नाम दा वणज कीता है संसार ते आउना उना दा ही सफल होया। जिना ने निरा दुनियावी तन दी दौड़ विच अपना जीवन बसर कर लिया हजूर कहिंदे ने कर औगण पछोतावण। क्यों? इसलिए के एता कपड़ रूप सुहावना छड दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन पाम दे राह पीड़े अगे जावना नंगा दोजक चालिया ता दिशे खड़ा डरावना कर औगण पछोतावना। ये अवगुण है क्योंकि निरंकार ने सानू ये अमोलक श्वासां दी पूंजी बख्शिश कीती है। आख्या नौ हिस्से जिहड़े समय दे हन ना ऐ बंदे ये तेरे वास्ते हन खुशियां माण आनंद माण अपने कार विहार कर पर श्वासां दा दसवां हिस्सा जिहड़ा है वह हर मनुख ने ईश्वर दे लेखे लाउणा है। जे नहीं लावेगा तो फिर सजा दा पागी होवेगा अगों लई प्रतीत भी जांदी रहिंदी है ते सजा दा भी पागी होंदा है। इसलिए पाप दी खट्टी

भगवान राम का ध्यान करने से हमारा ये जन्म तो सुधर ही जाता है, लेकिन इतना ही नहीं, आने वाला जीवन भी

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446। ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद मूर्ति गुरुमा इन लंदन। लर्न टाइमलेस योगिक विजडम डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्ड मास्टर। जॉइन अ 3-डे सीरीज ऑफ इनलाइटनिंग टॉक्स ऑन योग सूत्रास फॉर रियलाइजिंग द ट्रू सेल्फ 11th to 13th September 2026। लाइफ चेंजिंग सेशंस फीचरिंग प्रोफाउंड टॉक्स, प्रैक्टिकल इनसाइट्स एंड पावरफुल मेडिटेशंस एट हरिबेन बच्चूभाई नगरेचा हॉल, 202 लेटन रोड, लंदन E151DY, ऑन फ्राइडे 11th एंड सैटरडे 12th September 6 PM to 8 PM and Sunday 13th September 3 PM to 5 PM. Free event, all are welcome. For more details call AK Basra 07977201226, Mirdosh Kumar 07899055525, Gurkirit 07886545970, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: कभी किसी की दुल्हनिया बनोगी या मुझसे शादी करोगी?
1: मुझसे शादी करोगे? लाइफ बना दूंगी,
0: लेकिन पर्दे तक तो ठीक है, पर असल में
1: माझ्याशी लग्न करशील? मजेत रहशील?

ब्लैक वर्ल्ड रिकॉर्डिंग। एक सवाल है जो जितनी बार मैंने सुना है वो दुनिया में किसी ने नहीं सुना होगा। कब कर रहे हो? पहले ये सवाल सुन के मैं बहुत चिढ़ता था, अब मैं भिड़ता हूँ। कोई पूछता है कि कब कर रहे हो तो मैं पूछता हूँ

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: For your family treat this summer,
3: visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
2: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
3: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
2: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
3: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.

दुआओं के फूल आपके नाम करते हैं, आपकी चाहतों को, आपकी मोहब्बतों को सलाम करते हैं। बन जाए आपकी ज़िंदगी खुदा की नेमतों और बरकतों से जन्नत, यही दुआ हम सुबह, दोपहर और शाम करते हैं 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे। ये आपका अपना सनराइज रेडियो है। शहनाज मंसूर आपकी खिदमत में हाजिर है। कबूल कीजिए मेरा मोहब्बत भरा चाहतों भरा खलूस की अत्ता गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज़ ने आप तमाम को खैरियत से पाया होगा और आपका पिछला हफ्ता और आपका आज का ये खूबसूरत जगमगाता चमकता हुआ दिन जो है वह खैरियत से गुजर रहा होगा। आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मौसम के इस खूबसूरत मौसम के मज़े ले रहे होंगे। आपकी फैमिली और आप सब के लिए हमेशा के लिए दुआएं रहती है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज व अमान में रखे, आपके तमाम खूबसूरत रिश्तों को और आपके तमाम अहलो अयाल को, आपके बुज़ुर्गों को, आपके हमसायों को, आपके रिश्तेदारों को और आपके चहेतों को, आपके दोस्तों अहबाब को, सभी को अल्लाह पाक हमेशा हमेशा आपके तमाम खूबसूरत रिश्तों को उन तमाम नेमतों से नवाजे जिसमें सबके लिए खैर बरकत हो, सुकून हो, अमन हो, राहत हो, सेहत तंदुरुस्ती हो, खुशहाली हो, मोहब्बत हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। आमीन सुमा आमीन। आप अल्लाह पाक आपकी और आप तमाम की ज़िंदगी के हर लम्हे को खैर आफियत अता फरमाए, सुमा आमीन। अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल आसान फरमाए, आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आपके रिज़्क और जान माल में बरकत अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी को खुशियों से माला माल कर दे और आपको हमेशा दुश्मनों से, हास्तों से और बुरी नज़रों से महफूज रखे, आमीन। सामीन, अगर खुदा ना खास्ता आप में से आज कोई बीमार है, परेशान है, किसी मुश्किल में है तो हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको सेहत कामल और अजल अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे और आपकी तकलीफ़ों को दूर फरमा कर आपकी ज़िंदगी में हर आपकी ज़िंदगी के हर लम्हा को सुकून और खुशहाली अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन।

0: दुआ है आपकी। जी हाँ जी, आपकी दुआ से हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आपकी दुआ एक बार फिर हमें यहाँ पर लेकर आई हैं और हम सबको मिल बैठने का मौका नसीब हुआ है इस खूबसूरत जुमा के दिन। तो आपको एक बार फिर से जुमा की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बता देती हूँ कि ये सनराइज़ रेडियो है 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में। 100.6 FM पे आप सुनते हैं वेस्ट यॉर्कशायर और कालजरडेल के इलाकों में। इसके अलावा DAB के जरिए आप सुन रहे हैं हमें केतली, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन और एकरिंगटन में। मिल्टन कीन्स में भी हम आने वाले हैं। मिल्टन कीन्स वालों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सनराइज जो है बहुत जल्द आपके इलाके में इर्द गिर्द आने वाला है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। इसके अलावा आप हमें एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर के जरिए भी डाउनलोड कर सकते हैं मुफ्त में www.sunriseradio.fm पे, और जहाँ चाहें जब चाहें 24 घंटे सनराइज की नशरियात को सुन सकते हैं। मैं हूँ शहनाज मंसूर, मेरा और आपका साथ होता है हर फ्राइडे को 11 और 2 के दौरान पुराने सदाबहार गीतों के साथ यादों का सफ़र, और हम हमेशा मिलजुल कर ये सफ़र तय करते हैं। आज भी इसी उम्मीद और यकीन के साथ आए हैं, आपका साथ मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा और आपकी दुआओं के साथ साथ इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आप जो आ रहे हैं आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं, जी आया नु कहते हैं, और चलिए अब आपसे बातें भी होंगी, मुलाकातें भी होंगी और आपकी डेडिकेशंस भी होंगी। हमारे खूबसूरत गीत, सदाबहार गीत और सदाबहार आवाज़ें आपकी मनपसंद आवाज़ें हैं जिनको हम आपके नामों के साथ जोड़ेंगे और आपके पैगाम भी आपके चहेतों तक पहुँचाएँगे 01274306666 पे। जल्दी से बढ़ते हैं, आपको हिट ऑफ द आवर सुनवाते हैं और फिर मिलते हैं उसके बाद।
1: The hit of the hour is brought to you by Sophie Jewelers, with a wide range of designs of all kinds of jewelry. Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-014.

0: मेरी सांसों में तुम, दिल की धड़कन में तुम। बहुत ही खूबसूरत गीत हिट ऑफ द आवर आपने सुना। आपको टाइम बताते हैं और फिर ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का टाइम है 11:17, 17 मिनट हो चुके हैं 11 बजकर, और लेते हैं नन्नी मुन्नी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
2: नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
4: Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901-831-165, Raman 078-341-77866, Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। जी हाँ जी, भेद को भेद ही रहने दिया चाहिए। अगर कोई आपके पास कोई आपको कोई बात बताए तो उसे आप अमानत समझना चाहिए या उसकी हिफाजत करनी चाहिए। भेद भेद ही रहे तो ठीक रहता है, अगर खुल जाए तो फिर वो सारी दुनिया में न्यूज़ हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत गीत था, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। जी हाँ जी, फिर जो पर्दे में वो होती है ना, एक कशिश होती है और एक वो तजस्सुस होता है इंसान को कि पर्दे के पीछे क्या चीज़ है और जब पर्दा उठ जाए तो वो तजस्सुस और वो जो कशिश होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो जो चीज़ पर्दे में है उसे पर्दे में ही रहने दो। आशा जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गीत था, बहुत ही प्यारा गीत था, हमारा मनपसंद गीत, आपका मनपसंद गीत था, जिसे आपके लिए हमने पेश किया। आप सभी को अच्छा लगा, अच्छी बात है। आप तमाम साथियों का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। आप सबको वेलकम, खुश आमदेद, वेलकम। और जी आयानु कहते हैं शुक्रिया अदा करूंगी अपने प्यारे से भाई, जी हाँ जी, अब्दुल कयूम भाई फ्राइजिंग हॉल से। सबसे पहले आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। हमेशा की तरह आप हमारे हम सफ़र बने और सबसे पहले यादों की गाड़ी पर आपने सवारी की। आपका खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों को, सनराइज़ की तमाम टीम को जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपने ढेरों दुआएं भेजी हैं, सलाम दुआ भेजा है सभी के लिए, और इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद भी आपने पेश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानिब से। हम सब के लिए भी दुआएँ दी हैं आपने, उसके लिए भी आपकी मैं मशकूर ममनून हूँ। हमेशा की तरह अच्छा लगा आपसे बात करके। प्यारे से भाई हीरा खान जी, आपसे भी बात हुई, बहुत अच्छा लगा। हमेशा की तरह आप अपने दोस्तों को याद फरमा रहे थे और सभी के लिए आपने दुआएं भेजी हैं, जुमा की मुबारकबाद पेश की है और इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद भी पेश की है अपने तमाम दोस्तों को और सनराइज़ की तमाम टीम को और सामीन को भी जो इस वक्त सुन रहे हैं और जो आज यौम आज़ादी मना रहे हैं, उन सभी को आपने ढेरों ढेरों दुआएँ दी हैं, मुबारकबाद पेश की है। हाजर जी, आपने भी कॉल की थी लेकिन माजर चाहती हूँ आपकी कॉल मिस हो गई, और वाजिद भाई आप भी कॉल कर रहे थे, आपसे भी बात नहीं हो पाई, माजर चाहती हूँ। मिस्टर मिसी हुसैन, आपका मैसेज मिला, बहुत बहुत शुक्रिया यादाबरी का, दुआओं का, और बहुत बहुत प्यार जो आपने सभी के लिए भेजा है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आपका साथ मिलता है, आपका प्यार मिलता है, और सबसे बढ़कर आपकी दुआएं हम पाते हैं, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। इन दुआओं की हमेशा हम सबको ज़रूरत रहती है, और इन दुआओं के साथ ही जिस दुनिया का दारोमदार है। जी हाँ जी, दुआएँ मिलती रहें तो रिश्ते सलामत रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, और दुआओं के साथ ही बच्चे जो है वो परवान करते हैं और फिर अपने तकमील तक पहुंचते हैं, उन्हें तरक्कियां मिलती हैं और जहां वो पहुंचना चाहते हैं उनकी जो ड्रीम्स होती हैं फुलफ़िल होती हैं। माँ बाप की दुआओं से, रिश्तेदारों की दुआओं से, बुज़ुर्गों की दुआओं से और बहन भाइयों की दुआओं से, ये सब दुआएँ जो होती हैं ना, रिश्तेदारों की, अपने चहेतों की, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। उनका प्यार भी और दुआएं भी हमारी ज़िंदगी को, हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया जो हमेशा अपनी दुआओं से नवाजते हैं, और ये प्रोग्राम जो है यादों का सफ़र होता है, और आप हमेशा पुराने सदाबहार गीतों को पसंद करते हैं और हमारे हम सफ़र बनते हैं। आज भी ऐसा ही हो रहा है, आपका साथ मिल रहा है, आपका प्यार मिल रहा है, उसके लिए शुक्रिया। और अब एक बार फिर से हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है और उसके बाद ये सिलसिले को हम जारी रखेंगे। साथ साथ रहिएगा, साथ निभाइएगा।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 3538. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: for your family treat this summer.
1: Visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
3: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
1: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
3: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
1: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.

मेरा सावन भी तुम हो, मेरी प्यास भी तुम हो, सहरा की बाहों में छुपी हुई आस भी तुम हो। तुम यूं तो बहुत दूर हो, बहुत दूर मुझसे, एहसास ये होता है मेरे पास ही हो तुम। खो जाओ तो वीरान सी हो जाती हैं राहें, मिल जाओ तो फिर जीने का एहसास भी हो तुम। लिखता रहूं तो तुम ही उतरते हो कलम से, लिखता हूं तो तुम ही उतरते हो कलम से, पढ़ता हूं तो लहजा भी तुम, आवाज भी तुम हो। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। किशोर कुमार की बेहद खूबसूरत आवाज़ में सदाबहार गीत आप सुन रहे थे 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में। शहनाज मंसूर आपके साथ साथ है, आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपके हम सफ़र, यादों के सफ़र में आप तमाम का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे प्रोग्राम की जीनत हैं, हमारे हम सफ़र हैं, हमारे साथ साथ हैं, प्रोग्राम को खूबसूरत और हसीन बना रहे हैं अपनी कंपनी के साथ। आपके साथ साथ बहुत मज़ा आ रहा है आगे बढ़ने में और ये 3 घंटे यूँ ही गुजर जाएंगे जब लम्हों में, क्योंकि आपका साथ हमारे साथ है हमेशा की तरह। आपकी यादों को ताज़ा करने आए हैं, आपकी यादों को उजागर करने आए हैं, आपके दिलों में छुपे हुए जो तूफान हैं उन्हें एक बार फिर से हम मौका दे रहे हैं कि वो बाहर निकल आए, अंदर ही अंदर ना वो आपको तड़पाए। तो ऐसे गीत जो आपकी यादों को ताज़ा करेंगे और आपके भूले बिसरे दिनों की याद को फिर से एक बार आपके लिए जो है हम ताज़ा करने आए हैं, और उन लम्हों को जो लम्हे आपने जिए थे, जिन लम्हों में आपने खुशियां मनाई थी और जो लम्हे आपके लिए बहुत कीमती हैं, इन गीतों के ज़रिए, खूबसूरत आवाज़ों के ज़रिए वो फिर से आपके गोशे गुजार करने आए हैं और उन्हें याद दिलाने आए हैं। याद कीजिए अपनी यादों को

मुझे फुर्सत नहीं, फिर किसी दिन आना। जी हाँ जी, लता जी और किशोर कुमार की आवाज़ में ये खूबसूरत सा दो गाना आप सुन रहे थे। लेकिन ये अच्छी बात तो नहीं ना, कोई मिलने आए तो आप कहें कि फिर किसी दिन आना। आज हमारे पास वक्त नहीं, आज हम आराम कर रहे हैं, आज हम बिजी हैं। ये मसरूफियात जो है वो इतनी ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत कम है। हम ये कहते हैं कि हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेटर ऑन कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, लेकिन इस ज़िंदगी का क्या भरोसा, कल ना आए, दोपहर ना आए, शाम ना हो हमारी ज़िंदगी में। तो इसलिए बेहतर है कि जिस लम्हे में, हाँ, जो लम्हा भी खुशियों भरा हो, जिस लम्हे में आपको

0: चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज ले जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3543।
3: 24 hours a day. Sunrise Radio. Sunrise Radio. Your soundtrack. Your time check.
4: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का टाइम है 11:48, 11:48 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो को 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुनते हैं पूरी दुनिया में। शहनाज मंसूर आपके साथ साथ है दोपहर 2 बजे तक पुरानी सदाबहार गीतों के साथ, आपके डेडिकेशंस के साथ और आपके पैगाम के साथ। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं और जिनके मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। आपकी यादावरी का और आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं एक और खूबसूरत संगीत की जानिब क्योंकि खबर का वक्त भी करीब है। तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी प्यारी सी बहन हाजरा जी आपका, आपसे बात हुई बहुत अच्छा लगा। आपसे बात करके बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, लेकिन आप धूप से छुप कर बैठी हैं। आप धूप से आपको धूप इतनी पसंद नहीं है जितनी कि मुझे पसंद है। आप कहती हैं कि आप तो धूप से छुप के रहती हैं क्योंकि आपको एलर्जी है शायद धूप से, हीट से आपका जो आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो चलिए आप अंदर से ही इस रोशनी को एंजॉय कीजिए, धूप को एंजॉय कीजिए। चंद दिनों का जो है वो मसला है, एक दो दिन ही तो हैं, इसके बाद तो फिर आपको पता ही है बारिशें ही बारिशें और ठंड ही ठंड। आपका मनपसंद मौसम आने वाला है, इंतज़ार कीजिए, एक दो दिन की बात है आ जाएगा। ये मौसम भी हमें एंजॉय करने दीजिए क्योंकि ये तो चंद दिनों का मेहमान है ना, चला गया तो फिर चला गया, फिर अगले साल गर्मी किसको नसीब होगी और किसको ये धूप नसीब होगी वे तो रब जाने। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और आपकी दुआओं का और आपके प्यार का बेहद शुक्रिया। हमें मैसेज मिला है ना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम सुन रही हैं, गीतों को एंजॉय कर रही हैं, आपने ढेरों दुआएं भेजी हैं एजाज को, उस्मान को और शौकत भाई को और तमाम सामीन को भी और सनराइज़ की टीम को भी। जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की है, बहुत बहुत शुक्रिया यादावरी का और आपकी दुआओं का। सुनते रहिएगा, आपके लिए गीत भी आएंगे अगले घंटे भी, खूबसूरत गीतों को हम आपके नामों के साथ जोड़ेंगे। आपकी डेडिकेशंस होगी 012-743-0666 पर।

सुभान अल्लाह, हसीन चेहरा, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को आपने सुना 103.2 FM पे और www.sunrisej.fm पे आप सुन रहे हैं हमें पूरी दुनिया में। मैं हूं शहनाज मंसूर और आपके साथ साथ हूं दोपहर 2 बजे तक। हमारे जो मुलाकात का पहला घंटा है वो तो बस इख्तिताम को पहुंचने वाला है, सिर्फ 6 मिनट नहीं, कम अज कम 6 से भी कम रह गए हैं पहले घंटे में। तो ये गीत इस घंटे का आपको सुनवाते हैं और फिर खबरों की तैयारी करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले घंटे में आपके डेडिकेशंस के साथ, आपके पैगामात के साथ। सुनते रहिएगा, साथ साथ रहिएगा।

0: 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे, आपका अपना सनराइज रेडियो है। शहनाज मंसूर आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम के दूसरे घंटे में। खुश आमदीद, वेलकम जी आयानम एंड गुड आफ्टरनून, और जुमा की बहुत बहुत मुबारक, और योम आज़ादी भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप तमाम साथियों का, भाइयों का, बहनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो कि हमारे हम सफ़र हैं, हमारे साथ यादों की गाड़ी में सवार हो चुके हैं और अपनी दुआ और मोहब्बत और खलूस के साथ हमारा साथ निभा रहे हैं। आप तमाम का बेहद बेहद शुक्रिया जो कि हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ साथ हैं। अच्छा लगता है आपके साथ साथ ये सफ़र तय करना और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना। आपके साथ साथ ही गीतों का भी मज़ा दुगना हो जाता है और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे हम सफ़र होते हैं। आज की या बातों का, आज की मुलाकातों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन भाइयों से और बहनों से बातें हुई बहुत अच्छा लगा, जीत कौर बहना आपसे बातें हुई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों के बाद आपसे बात हुई। आपकी सेहत के मुताबिक आप बहुत बहादुर हैं, बहुत हिम्मत वाली हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपको यूं ही और हिम्मत और सब्र दे, और आप बहुत जल्द, मेरी दुआ है कि आप बहुत जल्द सेहत याब हो जाएंगे। हमारे सब जो सामीन है वो भी आपके लिए दुआ करते हैं, आप सभी के दिलों में बसते हैं और सभी हमारे प्रेजेंटर्स भी आपको चाहते हैं और हमेशा आपके लिए दुआएं करते हैं। तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, फिक्र करने की क्या बात है, हिम्मत हो सब्र हो तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमेशा आपके साथ होता है और आपको वो सब कुछ नवाजता है। बस उम्मीद रखिए और यकीन रखिए अपने रब पर। याद अफ्रीका और आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। हाजरा जी आपसे भी बात हुई, बहुत अच्छा लगा। और हमारे प्यारे से छोटे, जी हाँ छोटे से भाई रुखसार भाई, आपकी कॉल मिस होगी जिसके लिए मैं माजत चाहती हूँ। अगर आपके पास वक्त हो तो दोबारा कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आपसे बात होगी। बहुत दिन हुए आपसे भी मुलाकात नहीं हुई। और हमारी प्यारी सी बहना मिसिस कौर, आप भी कॉल कर रही थी, आपकी कॉल भी मिस हो गई, माजर चाहती हूँ। और मुझे, मैं जानती हूँ कि आप हमेशा हमेशा हमारा प्रोग्राम सुनती हैं और हमेशा अपनी दुआओं से भी हमें भी और सभी को नवाजती हैं। आज भी आप सुन रही हैं और यकीनन आपके साहबजादे आज आपके साथ हैं, इसीलिए आपने फ़ोन कॉल मिलाई और बात करने की कोशिश की कि जब आपके साहबजादे, आपके बेटे बाहर होते हैं तो आप फ़ोन नहीं मिला सकती। तो कोई बात नहीं, आपने हाजिरी लगा दी और मुझे यकीन हो गया कि आप हमारे साथ हैं हमेशा की तरह। ढेरों दुआएं आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, ढेरों प्यार भी आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। पंजाबी का गीत ज़रूर हम लगाएंगे। तो ऐसा है कि हिट ऑफ द आवर आपको सुनवाते हैं और फिर उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और डेडिकेशन का सिलसिला भी शुरू करेंगे।
1: The Hit of the Hour, brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान जी हाँ जी, आज योम आज़ादी है और हमारे पाकिस्तानी भाई खुशियाँ मना रहे हैं। आप सभी को योम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क में और तमाम मुल्कों में अमन और सलामती अता फरमाए और वहाँ के जो रहायशी हैं, जो भी हमारे बहन भाई हैं, हमारे मुल्क के लोग हैं और जितने भी मुल्कों में इस वक्त परेशानियां हैं, अल्लाह पाक वो परेशानियां दूर फरमाए और सारी दुनिया में पीस हो, अमन हो, सलामती हो, खुशहाली हो, यही हमारी दुआ है। और आप सब भी दुआ कीजिए कि हर जगह सलामती हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों को, बहुत अच्छा लगा। हमारी प्यारी सी बहन मिसिस कौर जी, बहुत दिनों के बाद आपसे भी बात हुई, बहुत अच्छा लगा। आपने भी अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों को, सनराइज की टीम को योम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की है और ढेरों दुआएँ भी दी हैं। सभी को आपका बेहद बेहद शुक्रिया, आपके प्यार का, आपके खुलूस का। आप हमेशा बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ आते हैं और हमारा दिल मोह लेती हैं। हर बार आप हमारा दिल मोह लेती हैं। बहुत प्यारी हैं, बहुत मीठी हैं और आपकी बातों में जब प्यार होता है ना, बहुत हमारे दिल को छू लेता है और आपकी बातें हमेशा याद रहती हैं और हमारे साथ रहती हैं। और आप फ़ोन करें या ना करें, हमेशा आप हमारी दुआओं में हैं और हमारे साथ हैं और हमारी जो लिस्ट है ना, उसमें आपका नाम भी शामिल है। हमेशा हर प्रोग्राम में हम आपका नाम लेते हैं। मैं जानती हूँ कि आप फ़ोन कॉल नहीं कर सकती, बास दफ़ा जब आपका बेटा घर से बाहर हो तो आप उस वक्त तक नहीं कर सकती, लेकिन जब वो घर हो तो हमेशा वो आपको मिला के देते हैं नंबर सनराइज़ का और आपसे हमारी मुलाकात हो जाती है। आज आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टाइम बताते और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का टाइम है 14 minutes past 12। 14 मिनट हो चुके हैं, 12 बजकर लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
2: Sunrise Radio. बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: Have you noticed the way fans shout at football matches?
5: Oh, wake up!
4: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
6: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
7: Hold on, miss. 2055, we'll be grown up by then.
8: We're not having that, are we?
7: No. Hear that? It's water and cans.
9: And fix those drips and drops.
10: And take shorter showers, yeah?
11: Because when we work together,
12: it all adds up.
13: So come on, you lot. Search Let's Save Water.

ना जाने कौन सी दुआ का असर बनकर आए हो तुम, ना जाने कौन सी दुआ का असर बनकर आए हो तुम, वीरान दिल की दुनिया में सहर बनकर आए हो तुम। जिन लम्हों में सांस लेना भी मुश्किल लगता था, जिन लम्हों में सांस लेना भी मुश्किल लगता था, उन लम्हों की सबसे हंसी खबर बनकर आए हो तुम। तुम्हारा साथ मिला तो खुद से मोहब्बत हो गई, तुम्हारा साथ मिला तो खुद से मोहब्बत हो गई, मेरी अधूरी कहानी का हुनर बनकर आए हो तुम।

आज दिल खो बैठा तेरा दीवाना। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे। आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में। इसके अलावा डीएबी के जरिए ब्रैडफोर्ड, केसली, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन में भी आप हमें सुन रहे हैं। मिल्टन कीज में बहुत जल्द हम लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा 100.6 एफएम पे आप सुनते हैं हमें वेस्ट यॉर्कशायर के इलाके में और डाबी वगैरह में आप सुनते हैं इर्द-गिर्द के इलाकों में। और मैं हूं शहनाज मंसूर, आपके साथ साथ हूं दोपहर 2 बजे तक। प्रोग्राम का दूसरे घंटे का आगाज़ हो चुका है और इस घंटे में आपके पैगामात भी होंगे, आपकी डेडिकेशंस भी होंगी। हमेशा की तरह आप तमाम साथियों का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे प्रोग्राम की जीनत बन चुके हैं, जिनसे मुलाकातें हुई, जिनसे बातें हुई। बहुत अच्छा लगा आज के दिन आपसे मुलाकात करके। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे भाई, जी हाँ जी, फ्राइजिंग हॉल से हमें याद किया था, अब्दुल कयूम भाई फ्राइजिंग हॉल से। बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, अपनी दुआओं से नवाजा, अपने दोस्तों को और तमाम सामेन को और सनराइज़ की टीम को अपनी दुआएं भेजी हैं, जुमा की मुबारकबाद पेश की है, गुड आफ्टरनून कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आने वाला गीत आपके नाम करेंगे और आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों के नाम करेंगे और हमारे तमाम सामेन के नाम करेंगे जो भी इस वक्त सनराइज़ की नशरियात को सुन रहे हैं। यही गीत हम पेश करना चाहेंगे वाजिद हैलिफैक्स में, आपके नाम करना चाहेंगे। आपकी कॉल मिस होगी जिसके लिए माज़रत चाहती हूँ, आप दोबारा से फ़ोन कीजिए, इंशाल्लाह आपसे बात ज़रूर होगी। और यही गीत मैं नाम करना चाहूँगी, जी हाँ जी, मिसिस कौर, आपके नाम करना चाहूँगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमेशा की तरह आप प्रोग्राम को सुनती हैं, प्रोग्राम को इंजॉय करती हैं, अपनी यादों को ताज़ा करती हैं और हमारा मकसद पूरा हो जाता है क्योंकि हम आते ही इसी मकसद के लिए हैं कि आपकी यादों को फिर से ताज़ा करें, आपकी यादों को फिर से याद करवाएं आपको। एक बार फिर से आप वो लम्हे जिए जो खुशियों भरे थे। तो ये प्यारा सा गीत आपके नाम करेंगे और आपकी जानिब से तमाम सामीन के नाम करेंगे। इसके अलावा यही गीत मैं नाम करना चाहूँगी मिस्टर मिसेस हुसैन, आपके नाम भी, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आपको भी अच्छा लगेगा।

दीवाना है, दिल तो दीवाना है। ये दिल दीवाना बहुत ही खूबसूरत दो गाना था, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ें थी, लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, हम सब की मनपसंद आवाज़ों में ये दो गाना आप सब ने सुना। आपको अच्छा लगा मिसेज हुसैन, आपका बेहद शुक्रिया, आपके लिए था। आने वाला गीत भी आप ही के लिए होगा। तो बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से गीत की जानिब जल्दी से, मुकेश की आवाज़ में है ये गीत। मैं नाम करना चाहूँगी हीरा खान जी आपके नाम करना चाहूँगी, आपकी जानिब से आपकी तमाम टीम के नाम करना चाहूँगी, तारिक जुल्फी भाई के नाम करना चाहूँगी, महबूब इलाही है आपकी टीम में उनके नाम करना चाहूँगी, वाजिद हरिसफील में है उनके नाम, और आपकी जानिब से चौधरी मुजफ्फर भाई के नाम, अब्दुल कयूम भाई के नाम, अयूब चौहान के नाम, जावेद मीर भाई के नाम, चौधरी आसिफ रियासत के नाम, और सुल्तान भाई कराची वाले हैं उनके नाम, चौधरी फरियाद के नाम, सफ़ीउल्लाह भाई के नाम, शकील भाई बरले में हैं उनके नाम, नवीद राना के नाम, चौधरी वलायत खान के नाम, और तारिक भट्ट के नाम, कियानी मुदस्सर भाई हैं उनके नाम, परवेज़ खान के नाम, आमिर शहजाद के नाम, और जितने भी आपके दोस्त इस वक्त सुन रहे हैं उन तमाम के नाम, और हमारी जानिब से हमारे तमाम सामेईन के नाम ये प्यारा सा गीत।

दिल पर जाने ना देना दिल तोड़ तोड़ तोड़। मुकेश की बहुत ही प्यारी आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आपने सुना। अब जल्दी से सुनवाते हैं आपको एक और खूबसूरत गीत और खूबसूरत आवाज़ और आप सबका मनपसंद गीत, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है, यकीनन आप इसे एंजॉय करेंगे। ये गीत मैं नाम करना चाहूँगी हीरा खान जी आपके नाम करना चाहूँगी, वाजिद भाई आपके नाम करना चाहूँगी, और हाजरा जी फ़िलहाल ये गीत आप सुन लीजिए, थोड़ी देर में आपके लिए एक और खूबसूरत सा गीत लगाऊँगी। और यही गीत मैं नाम करना चाहूँगी अजीत कौर भैना आपके नाम करना चाहूँगी, और

0: हर जगह हो रहा है, हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हम सब की खैर करे और सब की हिफाजत फरमाए अल्लाह पाक। तो बहुत बहुत शुक्रिया याद आवरिका, आपने सभी दोस्तों को साथियों को मुबारकबाद पेश की है और उनके लिए गीत भी सुनना चाहें। आपके दोस्तों में शामिल हैं फरियाद खान हैं, महबूब इलाही हैं, आमिर शहजाद हैं, हीरा खान जी हैं, तारिक जुल्फी हैं, सफ़ीउल्लाह भाई हैं, तारिक भट्ट हैं, मुदसर कयानी हैं और आपके चैम्पियन, आपके जो चहेते हैं, जी हाँ जी, और हमारे प्यारे से भाई हैं परवेज़ खान जी, उनके लिए भी आपने गीत सुनना चाहा और उन्हें भी दुआएं भेजी हैं। काशिफ भाई को, कामरान भाई को, शकील भाई को, जहांगीर भाई को और राना नवीद को भी और दीपा बाजी को भी और नदीम मंसूर को भी आपकी जानिब से बहुत बहुत दुआएं और सलाम और बहुत बहुत जुमा की मुबारकबाद और आज आज़ादी की जो हमें आज़ादी की मुबारकबाद भी आपने पेश की है, तो आपका बेहद शुक्रिया। आप तमाम के नाम ये गीत हम पेश करेंगे, लेकिन ऐसा है कि ब्रेक टाइम आन पहुंचा है, आपको टाइम बताते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो गीत होगा वो आप तमाम के लिए होगा।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में जो यूके का टाइम है वो है 12:44, 12:44 हो चुके हैं। लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
2: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
1: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
2: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
3: Official media partner, Sunrise Radio.
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative. Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
3: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?
5: कहां आपका ये बजा ही सही

सब जिसे कहते हैं शबनम फूल के आंसू होते हैं। जी हाँ जी, ये सबका अपना नज़रिया होता है। कोई शबनम को देखता है तो कोई फूल को देखता है, कोई आंसू समझता है बस जिसकी समझ में जो आए वो समझ लेता है कि वो आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं या कि दुख के आंसू हैं। आंसुओं की भी कई किस्में होती हैं। लेकिन ने बहुत ही खूबसूरत गीत था और शायरी भी बहुत प्यारी थी और गिले शिकवे थे वो तो होने चाहिए, जहाँ प्यार हो वहाँ गिले शिकवे बहुत ज़रूरी होते हैं। बहुत ही प्यारा गीत था आप तमाम साथियों के लिए हमने पेश किया। और अब बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से गीत की जानिब। और ये गीत, जी हाँ जी, मैं नाम करना चाहूँगी अपनी प्यारी सी बहना, प्यारी सी बहना, जी हाँ जी हाजरा जी, आपके लिए करना चाहूँगी गीत जो मैं लगाना चाह रही थी। मेरी आँख जो लिस्ट है वहाँ से निकल चुका है, मैं ढूंढ रही हूँ, देखती हूँ किधर गया। आपके मन, आपका मनपसंद गीत है तो प्यार किया तो डरना क्या, देखते हैं, यहीं पे था लेकिन मेरे साथ आँख मचौली खेल रहा है ये गीत इस वक्त। चलिए बाद में लगा देंगे वो गीत आपके लिए। फिलहाल ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपके नाम करते हैं और आपके साथ साथ ये गीत हम नाम करना चाहेंगे जीत कौर भैना आपके लिए भी और समीना जी आपके लिए भी और आपके साथ मिस्टर मिसेस कौर आप सॉरी मिस्टर मिसेस हुसैन आपके लिए भी, मिसेस कौर आपके लिए भी। और यही गीत हम नाम करना चाहेंगे वाजिद भाई आपके नाम भी करना चाहेंगे। और इसी गीत को हमारे भाई नईम बगदादी भाई लाहौर से आपका भी मैसेज मिला, बहुत बहुत शुक्रिया, यौम आज़ादी पे आपने मुबारकबाद दी है हम सबको, तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और जुमा की भी मुबारक आपने पेश की है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ढेरों दुआएं आपके लिए भी हैं और उन दुआओं का जो आपने हमें भेजी हैं और हमारे सामीन को भेजी है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और ढूँढते हैं वो दूसरा गीत।

0: तेरा जिक्र हो रहा है इबादत की तरह, तुझे याद कर लिया है आयत की तरह। अरिजीत सिंह की खूबसूरत दिल को मोह लेने वाली आवाज़ में हिट ऑफ द आवर आपने सुना। प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी घंटे में हम आन पहुँचे हैं। आप सभी का खैर मकदम है, जी आयन खुश आमदीद, वेलकम, गुड आफ्टरनून, और जुमा की बहुत बहुत मुबारक, और योम आज़ादी भी आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। शहनाज मंसूर आपके साथ साथ है दोपहर 2 बजे तक। जी हाँ जी, 1 घंटा तकरीबन बाकी है हमारे और आपके साथ का, आप तमाम साथियों का जो कि हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं। एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आप तमाम के डेडिकेशंस और पैगाम का सिलसिला जारी है, तो बढ़ते हैं आपको टाइम बताते हैं और फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का जो टाइम है वो है 7 minutes past 1। जी हाँ जी, हम बात कर रहे थे और अब 8 minutes हो चुके हैं, 8 minute हो चुके हैं 1 बजकर, और अब जो है हिट ऑफ द आवर भी हो चुका है। तो बढ़ते हैं डेडिकेशंस की जानिब। डेडिकेशन का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करते हैं। ये प्यारा सा गीत जो कि हम हाजर जी के लिए पेश करने जा रहे थे, उनका मनपसंद गीत है। हाजर जी आपके नाम करेंगे और आपके साथ साथ यही गीत हम नाम करेंगे। अजीत कौर भैरा आपके नाम भी करेंगे और इसी गीत को हम नाम करेंगे। समीना जी आपके नाम, आबी के नाम, आशी, रुखसाना, कौसर, नसरीन, नौरिन, सभिया, नायला, शीला और फरजाना के नाम। इस उम्मीद और यकीन के साथ के हमारे सामीन भी इस गीत को एंजॉय करेंगे।

0: रिश्ता नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। हाजरा जी, आपकी पसंद का गीत आपके नाम किया और आपने सामीन के गोशे गुजार किया, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही खूबसूरत शायरी के साथ और बहुत ही खूबसूरत मीनिंगफुल शायरी के साथ। जी हाँ जी, अगर खुदा को हम हमेशा इस बात पे जो है ये बात याद रखें कि खुदा देख रहा है, तो हर इंसान अगर ये सोच ले हर काम करने से पहले, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि 100% जो गलत काम हो रहे हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, अगर हर इंसान सिर्फ ये सोच ले कि खुदा देख रहा है। तो बस यही कहना था, बहुत ही खूबसूरत गीत था, हम सब का मनपसंद गीत और बहुत ही प्यारी मूवी से लिया गया था। आपको अच्छा लगा, सुबीना जी आपका बेहद शुक्रिया, आपकी टीम ने भी पसंद किया और आप इंजॉय कर रही हैं मौसम को भी और ब्रेक टाइम को भी, और इस गीत को भी आपने बहुत इंजॉय किया, आपका बेहद शुक्रिया। आप ही के लिए था, आने वाले गीत भी आप ही के लिए होंगे। फिलहाल तो एक छोटी सी ब्रेक आपको सुनवाएंगे और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: नफसेन जायकातुल मौत
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं, टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।
3: गलियां घूमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
4: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
3: चाचा केड़ा चाचा?
4: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले, जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकन तीला, सिर्फ 2 पाउंड ना कानस लाने ना 1 पाउंड, छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
4: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

0: जी अब बेकरार है, छाई बहार है, आ जा मोरे बालमा, तेरा इंतजार है। बहुत ही खूबसूरत गीत, और वो कहते हैं कि शाहकार। जी हाँ जी, अनमोल गीत, ऐसा गीत जिसे कि बार बार सुनने को जी चाहे। आपके लिए पेश किया, आपको अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये गीत जो अगला आने वाला है, इसे मैं नाम करना चाहूँगी अजीत कौर भैना आपके नाम करना चाहूँगी, और यही गीत मैं नाम करना चाहूँगी वाजिद भाई आपके नाम करना चाहूँगी, हीरा खान जी आपके नाम करना चाहूँगी, अब्दुल कयूम भाई फ्राइजिंग हाउस से आपके नाम करना चाहूँगी, हाजरा जी आपके नाम करना चाहूँगी, और मैं माजर चाहती हूँ मेरी प्यारी सी बहन सायरा जी। जी हाँ जी, आप फ़ोन कर रही थी लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई, इसके लिए माजरत है। मैं बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हो पाई, अगर आपके पास आज वक्त है तो दोबारा से कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर बात करेंगे। ये प्यारा सा गीत आपके नाम भी, छोड़ गए बालम मुझे हाय अकेला छोड़ गए, छूट गया बालम
1: छोड़
0: हाय साथ हमारा छूट गया।

ऐसी चली बिरहा की आंधी तड़पत हूँ दिन रात। छोड़ गए बालम, बहुत ही खूबसूरत गीत लता और मुकेश की खूबसूरत आवाज़ों में ये दो गाना आप सभी के गोशे गुजार किया हमने सनराइज़ रेडियो पे 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे। आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में और 100.6 एफएम पे आप सुनते हैं कालदेर और वेस्ट यॉर्कश के इर्द गिर्द के इलाकों में। इसके अलावा डी ए बी के जरिए आप सुन रहे हैं। आप हमें इल्कली स्किप्टन लेज हालिफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्नली डार्विन नेल्सन एक्रिंगटन और बहुत जल्द मिल्टन केन्स में भी आप सुन पाएंगे। मैं हुसैनाज़ मंसूर आपके साथ साथ हूँ। दो बजे तक फ्राइडे को हमारी मुलाकात होती है 11 और 2 के दौरान पुराने सदाबहार गीतों के साथ पुरानी आवाज़ों के साथ यादों भरा सफ़र होता है और आप हमेशा हमारे हम सफ़र रहे हैं। आज भी आपके साथ साथ ये सफ़र बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ चुका है। थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया है। आप तमाम साथियों का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे साथी बने हमारे हम सफ़र बने, आपका शुक्रिया। ये प्यारा सा गीत आप तमाम के लिए है जो कि हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बन चुके हैं। मिसेस कौर आपके लिए और नईम बगदादी लाहौर में सुन रहे हैं आपके लिए और यही गीत हीरा खान जी आपके लिए और हमारे प्यारे से भाई रुखसार भाई आपके लिए और आपकी जानिब से आपकी तमाम टीम के लिए, आपके दोस्तों के लिए, कामरान भाई के लिए, काशिफ के लिए, शकील भाई के लिए, जहांगीर के लिए, राना नवीद के लिए, दीबा जी के लिए, नदीम मंसूर के लिए और महबूब इलाही के लिए। इसके अलावा फरियाद ख़ान है आपकी टीम में और आमिर शहजाद भी हैं, हीरा खान जी भी हैं, तारिक जुल्फी हैं, सफ़ीउल्लाह भाई हैं, तारिक भट्ट हैं और मुदस्सर कयानी हैं और परवेज़ ख़ान आपके चहेते आपके चैम्पियन हमारे भाई परवेज़ ख़ान के नाम भी। ये प्यारा सा गीत

0: मौसम है आशिकाना ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। जी हाँ जी, आशिकाना मौसम जो है वो दिल का होना चाहिए। वैसे तो मेरे ख्याल में तो आज आशिकाना मौसम है, लेकिन हमारे चंद सामीन हैं कि जिन्हें ये धूप नहीं भाती, तो हो सकता है उनके लिए जो है वो बारिश आशिकाना हो या सर्दी मौसम, बर्फबारी ऐसा मौसम या खिजां का मौसम। और मुझे तो मौसम बहार या धूप अच्छी लगती है। बहुत ही खूबसूरत गीत था। और बस अपने मूड को, अपने दिल को आशिकाना बना लीजिए तो कोई भी मौसम आशिकाना हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्यारे से भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे भांजे जो कि मुझे खाला भी कहते हैं, बाजी भी कहते हैं, आपे भी कहते हैं, और इतनी दुआएं देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं, वन एंड ओनली। जी हाँ जी, हमारे रुखसार भाई, दोबारा आपसे बात हुई। आपने जल्दी से कहा कि प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, अभी से आपको दुआएं दे दें, खुदा हाफिज़ कह दें, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका भी, आपको भी अपने हिफ्ज व अमान में रखे। आप यूं ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और आप सभी के खैर ख्वाह हैं, सभी को दुआएं देते हैं, हमारे प्रेजेंटर्स हों या हमारे सामीन हो या कि हमारे रेगुलर लिसनर्स जो कि हमेशा हमारे प्रोग्राम में आते हैं, वो उनको भी आप हमेशा अपनी दुआओं में याद रखते हैं, तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि आप दूसरों को इतनी अहमियत देते हैं और इतने प्यार और मोहब्बत के साथ उनके लिए दुआएं भी करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही काम करते रहिए। हमें आप बहुत खुश करते हैं जबकि आप सभी के लिए दुआएं देते हैं और दुआएं हम भी आपको दुआएं देते हैं, तो बस दुआएं करते रहिए, दुआएं लेते रहिए, खैर दे बांटते रहिए और खैर समेटते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: For your family treat this summer,
4: visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
3: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
4: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
3: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
4: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.

0: ਹੱਸੀਆਂ ਚ
1: ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੀ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਹਾਸਿਆਂ ਚ ਤੂੰ ਵੱਸਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਆਪਨੇ ਸੁਣਿਆ 103.2 FM ਪੇ ਔਰ www.sunrisegy.fm ਪੇ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ 100.6 FM ਪੇ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੈਸਟ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ और डी ए बी के जरिए कीथले इल्कली स्किप्टन लीज हालिफैक्स मैनचेस्टर इस लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्नी डार्विन नेल्सन एक्रिंगटन और मिल्टन कीन्स में आप हमें सुनते हैं मैं हुसैनाज मंसूर और आपके साथ साथ हूँ जी हाँ जी दो बजे तक थोड़ा सा साथ बाकी है तकरीबन 25 मिनट्स आप साथियों का फिर से शुक्रिया जो कि प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं और जो आ रहे हैं और जो आ चुके हैं आपका बेहद बेहद शुक्रिया प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने का हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरने का हमारा दिल खुश करने का आपसे बातें करके बहुत खुशी हुई बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और अच्छा लगा कि आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं गीतों को इंजॉय कर रहे हैं आपकी दुआएँ और आपका प्यार हमें मिला अब और क्या चाहिए क्या चाहिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए बस आपकी दुआएं ही लेने के लिए आए थे और वही ले रहे हैं और वही लेकर जाएंगे मेरा दिल अब तेरा ओ साजना कैसा जादू फेरा ओ साजना नौरिन ये गीत आपके लिए है सबीहा नायला शीला आबी आशी रुखसाना कौसर नसरीन फरजाना शकीला आपके लिए है सारा जी आपके लिए है और आप तमाम सामीन के लिए

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी

0: 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
2: हमारे स्टूडियो के घड़ी में यूके का टाइम है 1:44 और आपको सुनवाते हैं फ्लैशबैक.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

मेरे महबूब न जा, आज की रात न जा, होने वाली है सहर थोड़ी देर और ठहर। सुमन कल्याणपुर की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आपने सुनी। आप सुन रहे हैं सनराइज़ रेडियो को 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुन रहे हैं पूरी दुनिया में। DAB के जरिए आप सुनते हैं ब्रैडफोर्ड, कीथली, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन और मिल्टन कीन्स में। मैं हूं शहनाज़ मंसूर और मेरा और आपका साथ बस यही तक था, ख़त्म होने को आ रहा है। 10 मिनट रह गए हैं 2 बजने में और हमारी मुलाकात बस आज यही तक थी। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, फ़ोन पे हमसे बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। ढेर दुआएं आप सब के लिए छोड़े जाते हैं, आपकी दुआएं हमने पाई हैं और झोली भर के आपकी दुआ की हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं और काफ़ी हैं अगले हफ्ते तक। अगर आपको इन बिटवीन याद ना रहे तो काम चला लेंगे इन्हीं से। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें आज दुआएँ दी, अपना प्यार दिया, उसके लिए आप तमाम का बेहद शुक्रिया। अल्लाह पाक आप तमाम को सलामत रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें और अपनों के साथ साथ रहें। शहनाज़ मंसूर को इजाज़त दीजिए, वो कहते हैं कि रिश्ते सलामत रहें, यादें बाकी रहें तो मुलाकातें होती रहेंगी सनराइज़ रेडियो पे। तो चलते हैं और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते आज ही के दिन, जी हाँ जी, फ्राइडे के दिन 11 और 2 के दौरान, अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले जुमा को। तब तक आप सबका और हमारा अल्लाह ने निगहबान। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, खुदा हाफिज़ एंड गुड आफ्टरनून।

0: जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपरस्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5। टेलीफोन 01274464446।
3: बंगा नी कोई मजदूरी नी, ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है। जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
4: एक बारी फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता।
3: चाचा जूलर्स, ओकलैंड, ब्रेडफोर्ड 9। टेलीफोन 01274488935।
5: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organization's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: Have you noticed the way fans shout at football matches?
5: Oh, wake up!
4: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
6: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: Rent.
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 10 ब्रैडफोर्ड 7230 30.
4: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012 74 735 043.

0: नफ्सेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
0: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446।
3: Looking for a quality home to rent?
4: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
3: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 3535. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust. Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
4: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
3: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
4: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
5: Official media partner, Sunrise Radio.
6: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self. 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद मूर्ति गुरुमा इन लंदन। लर्न टाइमलेस योगिक विजडम डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्ड मास्टर। जॉइन अ 3-day सीरीज ऑफ इनलाइटनिंग टॉक्स ऑन योग सूत्रास फॉर रियलाइजिंग द ट्रू सेल्फ, 11th to 13th September 2026। लाइफ चेंजिंग सेशंस फीचरिंग प्रोफाउंड टॉक्स, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY, on Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra, 07977201226, Mirdosh Kumar, 07899055525, Gurkirit, 07886-545970. Usha, 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
5: Have you noticed the way fans shout at football matches?
6: Oh, wake up!
5: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
7: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446। Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रैडफोर्ड 7230303।
4: Have you noticed the way fans shout at football matches?
5: Oh, wake up!
4: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
6: Have you tried Caratino Better Ghee? The healthier, low-cost butter ghee alternative, Caratino Better Ghee, is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
0: कुल्लो नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: गलियां गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
5: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
4: चाचा केड़ा चाचा?
5: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीलाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
4: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
5: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274 488 935।
2: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a 3-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra, 07977-201226. Mirdosh Kumar, 07899-055525. Gurkirit, 07886-545970. Usha, 07931788-062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield, and Wakefield, with flexible tenancy options and home

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3।

0: मम्मी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।